प्रफुल्ल साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंजा साध संग हुए सब की रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग नकद हूं तावे साध संग स्थित मन पावे साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्राप्त सो प्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु कह संग महापुनीत साध संग किसी स्यों नहीं बैर साध के संग न बीघा पैर साध के संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग ना ही होता साध के संग तैसा बाबा पे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बनाई साध कै संग न कब हूंता वै साध के संग सदा सुख पावे साध संग बस गोचर लह साधु कै संग अजर सह साध के संग बसै थान उचे साधु कै संग मैल पहुचे साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निदान नानक साधु कह कुर्बान साध के संग सब कुल उधारे साध संग साजन मीत कुटाम निस्तारे साधु कह संग सो धन पावे जिस धन ते सब को बरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग सोभा सुर देवा साधु कह संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्वथान गम नानक साध कै संग सफल जन्म साध के संग नहीं काशकार दर्शन भेट दोत निहाल साध के संग कलुक्त हरै साध के संग नरक पर हरै साध के संग निहा उहा सुहिला साध संग विश्रत हर मेला जो इच्छे सोई फल पावे साध के संग न मृता जावे पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उदरै साध सुन रसै साध के संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ साध के संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध के संग लगै परम मीठा साधु कै संग कट कट जीठा साध संग पै आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजो साध की महिमा वेद न जाने जेता सुने तेता बख्याने साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का ना ही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा उचते उची साध की शोभा मूचते मूची साध की शोभा साध बनयाई नानक साध प्रभ भेद न पाई सलोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखै एक सुबिन कोए नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपति ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल मह कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व कौ सोक ब्रह्म ज्ञानी कहे दृष्ट समान जैसे राज रंग को लागे तुलपमान ब्रह्म ज्ञानी कह धीर जेक जो मसूदा को खुद को चंदन ले ब्रह्म ज्ञानी का एक नाव नानक जो पावक का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कह मन होय प्रकाश जैसे तारू पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सतर समान ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उच दे उचा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पाई नानक जिन प्रभाव करी ब्रह्म ज्ञानी सब कीरी नाथ मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा ना पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी के प्रयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा ब्रह्म ज्ञानी कह ना ही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सो भला ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह एक रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अंग बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी कह हुए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइए ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी कहे सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाय अदाखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्वग ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन मखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म

कई गुण तत् के बीते सदा निहार है को नेत्रे। कई गुण नाम रस पीवे अमर पय सदी जीवे। कई गुण नाम गुण गावे आत्म रस सुख सह समावे।

आपे ही फिर जाप अष्टपदी। जब अकार कछ ना दृष्टता पाप पुण तब कहते होता, जब धारी आपन सुन समाध तब बैर विरोध की संग मात। जब इसका वर्ण चेह न जापत तब हरख सोग को किसे व्यापत। जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह काक सोवत परम। आपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त को किसको गणी। जब एके हरगम पार तब नरक सुरक कह कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आप अपनी जोत धरै तब कवन निडर कवन कत डरे। आपन चले त्याग करने हार नानक ठाकुर अगम पार। विनाशी सुखा पनासन तह जन्म मरण को कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो हो किस होए। जब विगत गोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। आपन आप ही चर्जा नानक आपन रूप आप ही प्रजा। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो हो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौ मान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश तह शाल सिदर लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तह किसे भूख कवन तृप्तावे। करण करावन करने हार नानक करते का नाहि सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कला पे प्रवीन तह भेद कतेब कहा कुचीन। जब अपन आप उतार है तो सगन अपसगन कहा विचार है। जय अपन ऊंचा अपने आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। विषमन विषम रहे विषमाद नानक अपनी गत जन हो आप। जय छेल छेद भेद समाया हुआ किसे व्यापत माया। आपस को आपे है देश तह गुण का ना ही प्रवेश। जय एक एक भगवंता तह कौन चिंत किस लागे चिंता। जय अपन आप पति आरा तह कौन कथा कौन सुनने हारा। बहु बेअंत उचते ऊचा नानक आपस को आपे पहुँचा। जय आप रचियो परपंच कार तह गुण मैं कीनो विस्तार। पाप पुन तह पई कहावत को नरक को स्वर्ग बंछावत। आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पै पार। दुख सुख मान पमान अनक प्रकार की उपख्यान। आपन खेल आप कर देखै खेल संकोचै तव नानक एकै। जय विगत भगत है आप जय पसरै पार संत प्रताप। दो पाखा पे ध्वनि उनकी शोभा उनहो बनी। आपे कौतुक करै अनद चोज। आपे रस भोग निर्जोग जिस पावित स्यापन ना एलावे। जिस पावित खेल खिलावे बेसमार अथाह अगणत अतोलै।

अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार जात इस भावेता सृष्ट उपाय अपने भाने लई समाए तुम ते भिन्न नहीं किछ होए आपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभ जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत्का बेता नानक सगल सिष्ट का जेता जी जंत्र सब ताके हाथ दीन दयाल नाथ को नाथ जिस

तिस ते दूर कहा को जाय उबरे राखन हार त्याय निरपो जपै सगल पो मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जेस प्रभ राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाय मिटै अहंकार तिस जन को कोई न पहुँचन हार सिर उपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेखत उदृत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सोहोत निहाल ताके निकट न आवत काल अमर भय अमर।

संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक कसकट माहे अनक रंग नाना दृष्टा है नव निदमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कह न जाय अचरज विस्माद तिन देखिया जिस आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहा भगवंत तरण माय आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बाण तिन पर्वत पाहे पार ब्रह्म जैसी आग्या तैसा करम पौन पाणी बैसंतर माहे चार कुंट दह दिशे समाहे तिस्ते भिन्न नहीं कोठाओ गुरप्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमरत मह देख सस्य सून खतर मह एक बाणी प्रभ की सब को बोले आप अडोल ना कबहू डोले।

आत्मित कही न जाए दूसरो दासो जी पाए। तिसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नान के हो जान, जो जाने तिस सदा सुख होए। आप मिलाए ले प्रभ सोयो तनवंत कुलवंत पतवंत। जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, तन तन तन जन आया जिस प्रसाद।

गोविंद गुण नाम, जिस मन बसे सो होत निदान। सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान, पुरख प्रगट सब लोए, सब ते ऊच पाए स्थान, भौर न होवे आवन जान।

बोले सोनेहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जल केवल जल माही माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा जैसा मानिया है होए न तैसा रहाओ। नरपत एक सिंहासन सोया सुपने पया भिखारी अछत राज बिछर दुख पाया सोगत पही हमारी। राज भयंग प्रसंग जैसे है अब कश मर्म जनाया अनक कटक जैसे भूल परे अब कहते कहन न आया।

डर सो कोई मन भी से सार चन तोय भजन के मंता रंग बिरला को पावे संग एक बार जिज करमया गुरुसार नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नान करया सर समाए प्राव शांति दयाल पात विशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद कृपाल सर्व कटा कट प्रतिपाल आद पुरु कारण करतार भजन अंगे प्राण उदार जो जो जपे सोए पुनीत पद पाए ला मणित हम निर्गुणा नीच अजान नानक तू सर भगवान सर्व वैकुंठ मुग्न उपाय ये निखार के गुण गाय अनुग्रह भोग बढ़ियाय हर के नाम की कथा मन पाई भव भोजन का प्रसंगी रसना जपती हरा नीत परी सुकरनी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत सार संग प्राद्यो नवार सर्व सुख नानक प्रगा स्लो सर्गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे फिर जा प्यास परी जब कार्य कुछ न दृष्टिता पापुण तब कहते होता जब तारी आपन सुन संवाद तब बैल बरो के संग कमाल जब इसका बन चे न जब तब हर कसो को किसे व्याप जब आपन आप पार बम तब मोह कहाँ किशोर परम आपन खेल आवती जा नान करने हर न दूजा जब होत प्रा केवल चनी तब बांध मूत को किसको गनी जब एक हर गम पार तब नर्क शुरू को कौन उतार जान दे गुम प्राण से सुबाई तब शिव शब्द कह के ठाइन जब आपे आप अपनी जोर तरे तब कौन डर कौन कर डरे आपन चलते आप करने और नानक ठाकर गम पार अपनासी सुख अपनासन ते जन्म मरण को काम विनाशन जब पूर्ण करता प्राप्त होए तब जम किस राज कह कुछ होए जब अवगत गोचर प्राविका तब चित्र गुत के से पूछ लिखा जब नाथ निरंजन गोचर गांधी तब कौन छुट्टी कौन बंधन बांधी आपन आप आपी अचर जा नानक आपन रूप आपी उपर जा जे निर्मल पुरख पुरख पत होता तय बिन मैल कह क्या होता जे निरंजन का निर्वाण ते कौन को मान कौन अभिमान जे स्वरूप केवल जगदीश है तय शाश्वत लौट कौकी जे जो स्वरूपी जो संग समावे तय किसे भूकम दमसावे कर्ण क्रावण करने हार नाने करते का ना संवार जब अपनी शोभा संग बनाई ता कौन माए बा मित्र पाई जे सर्व कराया पेपर मीन तय बेर सेव का कोचीन जब अपन आप अवतारे तो सगन अब सगन कहाँ विचारे जे अपन ऊंचा अपना आप नेरा ते कौन ठाकर कौन कहिए चेरा विषम न विषम रह विषम

पिता माता की आशीष निमुख ना बिसरौं तुम कहो हर हर। सदा भजों जगदीश। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी अंदर सेवक परिवार नूं सतगुरु ने खुशियां दे सुभागे समय बख्शिश कीते ने। आप सारिया ने श्री अखंड पाठ साहिब जी दे जाप उपरंत भोग श्रवण कीते ने। उस तो बाद आपां सारिया ने ही बड़े प्यार एकाग्रता दे नाल गुरबाणी शब्द कीर्तन दे अंदर हाजरियां भरियां ने। हुण परिवार वल्लों बच्चिया ने गुरु शब्द की कीर्तन हाजरी राही आप संगतां की सेवा करनी है। आप सारिया ने बच्चों भी असीस बख्शिश करनी अते दासरियां वल्लों हुई भुलां की खिमा बख्शिश करके बुलाओ जी फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

बोलो जी वाहिगुरु, एको ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय। वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई त्याई फिरंगत गुर ते अमरदास। रामदास हुई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठै सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निधि आवै तहाय। सब थाई हुई सहाय, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई हुई सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु। पंजां प्यारियां चौं साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही। देख के अंडठ कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां